0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की।

0: प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल के लिया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur.

0: प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं, साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रूपये प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रूपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रूपये और डीजल 93.14 रूपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रूपये और डीजल 95.13 रूपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रूपये और डीजल का मूल्य 95.35 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
3: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी

0: देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
5: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
7: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहां कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
5: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय

0: भोजन सुखाए के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशू को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशू में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sander World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation,

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
3: और मैं अजीत। नमस्कार, राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पिकारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
3: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
3: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
3: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
3: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
3: बिल्कुल,
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
3: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
3: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
3: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
3: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
3: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को

0: ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
1: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
0: जैसे
1: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
0: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
1: तो श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
0: तो प्रश्न है

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
1: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
2: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
1: थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
2: अब सो जाओ।
1: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई? हाँ।
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
2: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
2: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।

0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
1: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
2: जी सुबेदार साहब।
1: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
2: जी सुबेदार साहब।
1: बोले सोनिहा।
2: सत श्री अकाल।
3: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के लहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर

0: परागमाला। परागमाला।
1: नमस्कार श्रोतागण, आप सुन रहे हैं परागमाला लाइव और मैं हूं आपकी प्रस्तुतकर्ता पूनम बरुआ। आज का विषय विशेष कार्यक्रम समर्पित है हिंदी सिनेमा की उस अद्भुत अभिनेत्री को जिनकी मुस्कान, अदाए, नृत्य और अभिनय ने करोड़ों दिलों पर राज किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की। आज उनका जन्मदिन है और इस खास मौके पर हम उन्हें दिल से शुभकामनाएं देते हैं।

0: विशेषज्ञ देखभाल और संवेदनशील सेवा का हकदार है। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी RRIH में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत होम्योपैथिक परामर्श एवं समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। कुछ विशेष रोग स्थितियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श एवं मार्गदर्शन भी उपलब्ध है। चयनित रोगों से पीड़ित पात्र मरीजों को निःशुल्क दवाइयां एवं प्रयोगशाला जांच सेवाओं का लाभ भी मिल सकता है। सरकारी संस्थान में विश्वसनीय और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाइए।
1: RRIH भेटापाड़ा गुवाहाटी।
0: यह संदेश जनहित में जारी।
2: श्रोतागण, कुछ कलाकार सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं करते बल्कि लोगों की यादों का हिस्सा बन जाते हैं। माधुरी दीक्षित उन्हीं कलाकारों में से एक है। उनकी मुस्कान में अपनापन, आंखों में भावनाएं हैं और उनके नृत्य में ऐसी जादूगरी है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए।

0: का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ था। बचपन से ही उन्हें नृत्य का बहुत शौक था। उन्होंने कथक की शिक्षा ली और धीरे धीरे अपने हुनर को ऐसा निखारा कि आगे चलकर वही हुनर उनकी पहचान बन गया।

90 दशक अगर बॉलीवुड का सुनहरा और दौर कहा जाता है तो उसमें माधुरी की चमक बहुत बड़ी वजह है। उनके फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी बल्कि भावनाओं का सफर थी। कभी मासूम लड़की, कभी चुलबुली प्रेमिका, कभी मजबूत महिला, हर किरदार को उन्होंने इतनी खूबसूरती से निभाया कि वह किरदार अमर हो गया।

0: श्रोतागण, इस गीत के साथ मैं पूनम बरुआ लेती हूँ आपसे इजाजत। आज के परागमाला लाइव में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: परागमाला। परागमाला।
2: ইমান পৰি পৰাগ।

0: বিদ্যার্থীর অনুষ্ঠান প্রাথমিকৰ পৰা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ভিত্তিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সমৃদ্ধ কৰা একমাত্ৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰৰ সময় প্ৰতি সোম বুধ আৰু শুক্ৰবাৰে বিয়লি 5:45
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু এতিয়া 12:00 হিন্দীত বাতৰি আৰু 12:05 আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
2: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই কনকলতা। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
2: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
2: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया

0: चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिन इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विनम्र का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए

0: सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
3: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव

0: संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमानन नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विद्युतसरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेन्द्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: के थे के रे तुम लापेन के रे तुम कुरुसार तुम ना सोंसि पुको के हर के बंग के इले तुम के क्रोयार ना बंग के हाला हर बसी बंग का सिंग लुको सिंग ठीक है
1: ओय ओय ओय कलां
0: जो लपवान सिले तुम कर बेता बंग के क्रोय
1: कलां कलां
0: इले तुम बंग के नोनो बंग के हाला बंग सो अलांगा हर बंग जुरे से अराख हर जुन रोम से लापेन जुन सि त अकेलित
1: अकेलित से जुन रोम
0: मे पिक लो नंगले ए के थुर मिरे सोय जांगा तमा फान के थान के परे तेकांगा पोट लापेन ला डाक सुदियर लो के वांग पेन ला पिथे का पोर तमे नंगले ने क्लोंग पेन के थान पोन थे के पोसिनल फांचो रोपर पेगलो तंते पिनी के अपोरलम दोगो पोसे रितम काचिंग की जाय थान तला पलांग तोना ना कोरवांग ठुक
1: कोरवांग ठुक
2: लापान पोर नंगले तुम फिलिप तारो लापेन प्रदीप रंग फारांग बोंग जेहु चुपु दलम जे राजुलंग थांगलो লাকে আকাশবাণী গুৱাহাটী মহাবাহু কার্বি আংডেংকে বাং মিডিয়াম ভি পেন বিটার ভারুক লিরা ক্রি সিরা টবরা ফ কিলো হার্স পেন ভারু টক্স রেং করা সির কেবলা পেন মেগা হার্স পেন লে ভারু ইসিরা ইসিরা টবরা ট্রক হ্যান্ড পুথ আদুন্থু লুঞ্জে থাকাং ডেঙ লং পেন লুঞ্জে রাজেক সুনাং কিলুঞ্জে সুরেন বি লাপেন মালিনী টিসুপি কিলুনা লুঞ্জে থাক আলু নালাম থি দন বারিম

आकाशवाणी गुवाहाटी महावा हो दिनैनि रादाबखौ फरायदों बैजयन्ती नार्जारिया गागि बिजेपि दैदेनगिरि एबा गोदानै थांनाय बिसायख'थियाव देरहानाय एमएलए चन्द्रमहन पाटवारिया दिनै आसाम विधानसभानि गेजेर नङै बुंथिगिरि महरै समायखेरा लायो हादरसा बेंगिरि लक्षण प्रसाद आचार्यआ लकभवनाव दिनै खुंनाय मोनसे आफादाव बिथां पाटवारिखौ समायखेरा लाहैयो गेजेर बुंथिगिरि सायख'नाय जायागौमानि गेजेर नङै बुंथिगिरिया सदननि हाबा हुखाखौ सामलायगोन मुख'जाथावदि फैगौ 21 मेयाव जागायनो गोनां 16 आसाम विधानसभानि गिबि जथुम्मानि गिबि सानाव गेजेर नङै बुंथिगिरिया गोदानै सायख'जानाय एमएलएफोरखौ बिबान आरो समायखेरा लाहागोन बेनि उनावनो विधानसभानि गोदान बुंथिगिरि सायख'नाय जागोन खुंथियाव थानाय बिजेपिया विधानसभानि उननि बुंथिगिरि महरै भवानिपुर सरभगनि एमएलए रन्जित दासखौ लुगैदों हादरसा बेंगिरि लक्षण प्रसाद आचार्यआ मैया गोदानै समायखेरा लानाय साब्रै मन्थ्रिनि बिबानफोरखौ राननानै होयो बेबायदियै रामेश्वर तेलीनि सोलायनाय आरो जौगाखांनाय लेबार जौगानाय आरो सा जनगोष्ठी आरो आदिबासीनि जौगाखां बिफानि बिबान होनाय जायो अतुल बरानो पंचायत आरो गामि जौगा आसाम गोरोबथा मावफुंनाय सीमा रैखाथि आरो जौगानाय लोगोसे आबकारि बिफानि बिबान होनाय जादों बेबायदियैनो मन्त्रि शरण बर'नो रोगाथाय आरो बड'लेण्ड जौगा बिफानि बिबान होनाय लोगोसे अजन्ता नेयगनो दावबायनाय आइजो आरो

गुदिया जौगानाय बिफानि बिबान होनाय जादों। पेट्रल डिजेलनि खरसा खमायनो थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ हांख्रायनायनि फारसे गोसो होनानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त विश्व शर्माया बिथांनि कनभयनि बिबांखौ खमायदों। सोनाब एसियानि दासान्दि थासारिनि जाउनाव मुलुगनाङै फैनाय थाव आरो इन्धननि खैफोदनि थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीखौ हमनानै माखासेमानि मिरुनि मन्त्रि आरो गुबुन हादरसानि गिबि मन्त्रिफोरा गावसोरनि कनभयनि अन्जिमाखौ खमायनाय नुनो मोननाय जादों। ओरैहाय थाव कम्पानिफोरा पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ मोनफ्रोम लिटाराव थायथामै बारायना होदों आरो बेनि थाखाय दिल्लीयाव मोनफ्रोम लिटाराव पेट्रलनि बेसेना 97 रां 77 पैसा आरो डिजेलनि बेसेना 90 रां 67 पैसासिम बांबाय। ओरैहाय पेट्रलनि बेसेना कलिकातायावबो लिटारसेयाव 108 रां 74 पैसा आरो डिजेलनि बेसेना 93 रां 14 पैसासिम बांदों। बिसायख'थि आय'गा सा सानजानि गं 7 हादरसाफोरजों लोगोसे हादरनि गासै गं 16 हादरसा आरो गंथाम मिरुजों खुंनाय आनसोलाव फारियै SIR थामहिम्बा भटार फारिलाइनि जर'खा आबुङै फोसावनायनि थामथि खोन्दोखौ जागायजेनगोन होननानै फोसावदों। बे खोन्दोआव अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज'राम, नागालेण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़िसा, झारखण्ड, हारियाना, पान्जाब, उत्तराखण्ड, तेलेंगाना, कर्नाटक, दिल्ली, छत्तीसगढ़ आरिखौ हमनानै माखासे हादरसाफोरखौ लानाय जादों। 30 मेयाव जागायनो गोनां बे खोन्दोआव 3,94,000निख्रुइबो गोबांसिन बुथ थाखोनि बिबानगोराया 36,73,00,000 भटोग्राफफोरनि न' न' थांगोन। 3,42,000 बुथ थाखोनि एजेन्डा बिबानगोराफोरखौ मदद होगोन। बिसायख'थि आय'गा मैया मोनसे बुंथिनियाव बरफ खोबनायनि थाखाय हिमाचल प्रदेश, जम्मु काश्मीर आरो लाडाखनि अवस्थाखौ नायनानै बे ओनसोलफोरनि थाखाय SIRनि खामानि समखौ उनाव फोसावगोन होननानै बुंदों। SIRनि उनाव 6 सेप्टेम्बराव सिक्किम, मिज'राम, मणिपुर आरो उड़िसानि भटार फारिलाइखौ फोसावनाय जागोन। हादरसा सरकारनि गुदि सोलोंथाय सामलाय मावख'आव फिन फोरोंगिरि थिसननायनि हाबाफारिखौ जागायजेननो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बेबायदियै गुदि सोलोंथाय सामलाय मावख'आव गासिबो जिल्लानि जिल्ला गुदि सोलोंथाय बिबानगिराफोरनो लाइजाम दैथायना गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिनि मासिनि खारि हरनो थाखाय बिथोन होदों। फैगौ 30 मे एबा बेनि सिगां लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिफोरनि खारिखौ थिखाना पर्टेलाव होनो बुंनाय जादों। जुबिन गार्गनि थैनायनि अजदाव दाय नांनाय सामखानु महन्तनि जामिननि आर'जखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि न्याय बिजिरगिरि मिताली ठाकुरियानि बिसारपीठआव दिनै हियारिंनि थाखाय थि खालामनाय जादों। बेनि सिगां गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि न्याय बिजिरगिरि पार्थिव ज्योति शइकियानि बिसारपीठआ थांनाय बुधबाराव दाय नांनाय सामखानु महन्तनि जामिननि थाखाय आर'ज खालामनायखौ हियारिं थाखाय नाजावनो गनायाखैमोन। जर'खा मावफुं हान्जा आसाम आरो कामरूप पुलिसआ फेग्रा मुवानि बेरेखाय जयै सिग्रोमना 21 कौटिनिख्रुइबो गोबांसिन रांनि फेग्रा मुवा हमनो हायो। पुलिसआ सुलुंनिफ्राय मोननाय खारिनि सायाव संदानना 2 खावसे किल'ग्राम हिर'इन आरो 8 किल'ग्राम भांजब्द खालामो। बेजों लोब्बा गोनां साबा सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। ओरैहाय डिब्रुगड़ जिल्लानि थेङाखाट पुलिसआ मैया सिग्रोमना तेलपानि बनगावनि न'खरनिफ्राय गोबां बिबांनि भांजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमो। सरासनस्रा सुबुंनि गेजेराव आबहावा सांग्रांथि सैनो हानाय जौगानाय आरो आबहावानि फारसे बिबान थानाय गोसो दानायनि थांखि मरिगाव कलेजआव जिउनि थाखाय आबहावानि फोरबो जथुम्मानि लाहार फाहार खालामनाय जादों। मैयानिफ्राय जागायनाय बे फोरबोआव गाबोन जोबगोन, जेराव दङ दैमा, हाग्रा ओनसोल, हाजो, सेरफां आरो लैथोमा। बे आयदाजों खुंनाय फोरबोनि जथुम्मानि गेजेरजों रोंगौथिनि सायाव आरो सिङारि सोलोंथायनि गेजेरजों आबहावा सोलायनाय सैनाय गोहो आरो आबहावा गोनोखो सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनाय नाजानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै।

0: खुलुमबाय बेयो आगाजबानी गुवाहाटी नोंथांमोना आयदाखौ खोनानो मोन्दों महाबाहु दालायनिफ्राय गिबियावनो दुलाराय खोनासंगिरिफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बाउनानै दिनैनि बर' आफादखौ बेखेवनाय जाबाय आफादखौ फोसावनाय जादों आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालायनि मिडिया मैफनि 411.5 मिटाराव आरो एफएमएननि 101.6 मेगाहार्ट्जआव बे फोसावनायखौ नोंथांमोना आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्ट्ज आरो आकाशवाणी धुबुरीनि 103.3 मेगाहार्ट्जआवबो रिले खालामनानै फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दं लोगोसे निउज अन एयार मबाइल एप आरो एआईआर रेडिय' मबाइल एपनि जोहैबो नोंथांमोना बे फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दं दिनै स्टुडिय'आव दं आं नगेन दैमारि आरो आंजों लोगोसे दङ बैजन्ति नार्जारिया दान्दिसेनावनो नोंथांमोना जोंनि उननि गासै हाबाफारिखौ खोनानो मोनगोन गोबांथार लोमजानाय गान्थि गान्थि सानाय खर' सानाय गन्थं खुगा एबा हाथाय मोदोमनिफ्राय थै गनाय बायदिया डेंगु बिरामनि लैखोन डेंगु बिरामखौ देबथेंग्रा थाम्फैया बिदै दैनो हायैबादि दै दोननाय बासनखौ खोबनानै दोननांगौ लोगोसे नाङै बासन टायार नालेंखरनि खावसा आरियाव दै जमा जानो होनो नाङा डेंगुनि देबथेंग्रा थाम्फैया सानावसो अरो बेनिखायनो सानाव उन्दुनायावबो मुसारि सोंनांगौ लोगोसे गासै मोदोमखौनो खोबनानै सि गाननांगौ बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु जों दायो फोसावना लानाय जादों थुनलायारि आयदा थुनलायारि आयदानि गिबियावनो जों नोंथांमोन खोनासंहोनो लानाय जादों कालिचरण उजिरा गावनो माखासे खन्थाइ सुजुनानै आवरायनायखौ बिदिब्ला खोनासंदो दिनैनि थुनलायारि आयदायाव गिबि फोसावजेननाय कालिचरण उजिरा गावनो माखासे खन्थाइ सुजुनानै आवरायनायखौ
1: दुखु सैनांबाय दंमोन फिसाजो धोरोमाव लानाय बियो दंमोन फिसाजो धोरोमाव लानाय बियो लेखा फोरोङो देर देखोन देरबाय बिफायानो फेदेरबाय देर देखोन देरबाय बिफायानो फेदेरबाय सिख्लाबो जाबाय फिसाजो रुमबां महर अखाफोर गावदां फिसाजो रुमबां महर अखाफोर गावदां न'खरनि सोरां इयुन सिमांमोन फिसाजो जाबाय जौमोन इयुन सिमांमोन फिसाजो जाबाय जौमोन बयबो नुदोंमोन अन्थोबखौ दोनबाय सोरनावबा खारसनहैबाय अन्थोबखौ दोनबाय सोरनावबा खारसनहैबाय दुखु सैनांबाय आं नेबाय थागोन नों फैगोन होन्ना लामा नायदों आं नेना नों फैगोन होन्ना लामा नायदों आं नेना बुंहरनाय बाथ्रा आं खेंना दोन्दों फैगोन नोंनि लामाजों आं खेंना दोन्दों फैगोन नोंनि लामाजों गोरबोखौ थिदों सोदोब खोनायो नों फैनाय आगाननिनो सोदोब खोनायो नों फैनाय आगाननिनो गोरबोखौ मोननो आथुमसे अननाय जिउखौ लानानै थांनाय आथुमसे अननाय जिउखौ लानानै थांनाय अननायजों हिनाय गोरबो खथायाव आसाथि थायो जेराव गोरबो खथायाव आसाथि थायो जेराव आं उसाव बादाव गावखौनो सोङो लोगो हमनो नोंखौनो गावखौनो सोङो लोगो हमनो नोंखौनो गोरबोआ मेङो बुब्लिया फैगोन हांमाजों स्रोद बारलांगोन बुब्लिया फैगोन हांमाजों स्रोद बारलांगोन आं नेबाय थागोन थैस' थांस' नोंखौनो दं गोरबोआवसो नोंखौ आं मोजां मोनो दं गोरबोआवसो नोंखौ आं मोजां मोनो बुं माब्ला फैनो

मोजां मोननाया दङ सानबायदि जोंना, मोजां मोननाया दङ सानबायदि जोंना, गोजानाव थाना हराव दानखोमसि सोरांखौ होनो आंनि, हराव दानखोमसि सोरांखौ होनो आंनि, अखाफोर बायदि सोमखोर लैथोआ फैलासेम निजोम जाया, सोमखोर लैथोआ फैलासेम निजोम जाया, अब्लासिम जोबा लैथोमा बिखा जेब्लासिम रानजोबलाङा, लैथोमा बिखा जेब्रासिम रानजोबलाङा, अन्नाया जोबा आं मोजां मोनो थैस' थांस' नोंखौनो, आं मोजां मोनो थैस' थांस' नोंखौनो, बे अराय सैथो साखि महरै लाखि गोरबो बोरलाजों मोजां मोननाय जिलिदखौ, गोरबो बोरलाजों मोजां मोननाय जिलिदखौ आंखौ गावबाय नों, बिखायाव हाब्बाय गोसो गोरबो आं होबाय, बिखायाव हाब्बाय गोसो गोरबो आं होबाय, आं नोंनि जाबाय, नाथाय नों गावनाय खुथार गोबारै खारनाय, नाथाय नों गावनाय खुथार गोबारै खारनाय गोफात जिलिदा बिखानि सिङाव हाबनानै थाथाबासै, बिखानि सिङाव हाबनानै थाथाबासै गब्लंसो लांबाय, आं नुवाखैमोन उनाव सोरबा थानायखौ, आं नुवाखैमोन उनाव सोरबा थानायखौ, गावदों नों जायखौ, दिनै आं सासे जखम जानाय सुबुंथि, दिनै आं सासे जखम जानाय सुबुंथि, जोमैनि दाखा बिखा गब्लंनाय जिलिदा फोरमायलांदों, बिखा गब्लंनाय जिलिदा फोरमायलांदों गोथार बिखा नों, बै जिलिदाव दं नांलानानै नोंनि थै, बै जिलिदाव दं नांलानानै नोंनि थै, बियो मिथिगौ अख्रां बिखानि साखि महरै लाखि, अख्रां बिखानि साखि महरै लाखि गोरबो अननायनि, सम सम आं सोङो नोंनि जिलिदनि गुमुर, सम सम आं सोङो नोंनि जिलिदनि गुमुर गब्लं बिखाजों, नों माबोरै दं आंनि गोरबो बारलांना, नों माबोरै दं आंनि गोरबो बारलांना थारै खुदा, अननाय एब्रना बिखायाव नोंनि उन्दुनाय गोजोन थावनि, बिखायाव नोंनि उन्दुनाय गोजोन थावनि, सुदेम जिउ आंनि जेरावबो गैया सोलेरा गोजोनथारा, जेरावबो गैया सोलेरा गोजोनथारा आंनि एनसिमा, अननाय फिथिखा नोंनि समायना बिखा, अननाय फिथिखा नोंनि समायना बिखा दुंब्रुद खाथखा, नोंनि गोसोनि थरसे अरखिया आंनि, नोंनि गोसोनि थरसे अरखिया आंनि, गोरबो दं साखि अननाय एब्रना थांबाय नों आंखौ गारना, अननाय एब्रना थांबाय नों आंखौ गारना, खामबाय गोरबोआ होबाय इसोरनो फापफोनफोरखौ बिजिरनो, होबाय इसोरनो फापफोनफोरखौ बिजिरनो, नेनाल' थादो आं होखार हाया मादि थासारि नोंखौ गोसोखांनायनि, मादि थासारि नोंखौ गोसोखांनायनि गोलाव बे हरनि, नों साया माया उन्दुखनलांनो हाया, नों साया माया उन्दुखनलांनो हाया, मानो सोराङा नोंनि महरा हाबना दं गोरबो बिखा, नोंनि महरा हाबना दं गोरबो बिखा, आं होखार हाया अरखि गुस्थिजों ग्लब ग्लब बिखा गोदौदों, अरखि गुस्थिजों ग्लब ग्लब बिखा गोदौदों, नोंबो खामफादों जाख्रिसे अखा लोगोसे आं बारहुंखा, जाख्रिसे अखा लोगोसे आं बारहुंखा महर दैबाना, सान्दुं बोथोरनि दुंब्रुद गोरबो मोननैनि, सान्दुं बोथोरनि दुंब्रुद गोरबो मोननैनि इयुन जोलैनि, बि नोंनोमोन बादायथिलियाव हायाखैमोन देरहानो, बादायथिलियाव हायाखैमोन देरहानो।

0: आनो बायदि फोथाराव बैफोर सिस्लायाव गोबां खेब जेननांदोंमोन बैफोर सिस्लायाव गोबां खेब जेननांदोंमोन रिमोन लाथारमोन नाथाय बाखनायथाव सानसे देरहासारदोंमोन नाथाय बाखनायथाव सानसे देरहासारदोंमोन बुलुर आयदायाव नोंनि बिखाया आंनि बुलुर फोथारमोन नोंनि बिखाया आंनि बुलुर फोथारमोन जाय बि नोंनोमोन नोंमोन हाथरखि गोमानाय बिखा लांदां गोरबो अख्राङा गोमानाय बिखा लांदां गोरबो अख्राङा जोमैनि दाखा अन्नाय सोलायना होबाय नों दुखु जार्ला अन्नाय सोलायना होबाय नों दुखु जार्ला बोरायबाय नंना मेगनाव गैला मोदैनि दुंब्रुद फुंखा मेगनाव गैला मोदैनि दुंब्रुद फुंखा थाबाय रानथेना आंनि गोरबोआ दुखुजों बालाहामा आंनि गोरबोआ दुखुजों बालाहामा दंसै रानस्रावना नोंमोन हाथरखि बिखा नोंनि अनसुलि नोंमोन हाथरखि बिखा नोंनि अनसुलि दिनै मालायनि नायफै आं थैब्ला गोसो आंनिनो नों गोमानाय फिसाजो गोसो आंनिनो नों गोमानाय फिसाजो मानोथो थांखो नेवसिना अन्नाय थाहैबाय नों सिरिहाय नेवसिना अन्नाय थाहैबाय नों सिरिहाय आं हालाय हाफाय दोनदों आं बोन्ना अन्थोबा दङ फिसा दोनदों आं बोन्ना अन्थोबा दङ फिसा थांफै नों लाना मोनदोंमोन लोगो बोजबदोंमोन आं नोंखो मोनदोंमोन लोगो बोजबदोंमोन आं नोंखो गोरबो फिसाजो मबाइला बुंला अन्नायजों हेलो आफा मबाइला बुंला अन्नायजों हेलो आफा नायफै आं थैब्ला
1: एसएसएम कालिचरण उजिरा गावनो सुजुना फरायथिनाय गिबि फोसावनाय माखासे खन्थाइफोरखौ खोनासंनो मोनबाय थुनलायारि आयदायावनो खोनासंबावदो बिनय कुमार बसुमतारिनि गिबि फोसावनाय सुंद' सल' जायख्लंनि गोदान जारिमिन
2: जायख्लंनि गोदान जारिमिन नंखाया नंगौ नंगौआबो माब्लाबाबो नंखाय जानो हाथारा जायख्लंनि जिउ मोनसेनि जारिमिननि सल'खौ रायखाङोब्ला दान मोनसेसो नांगोन खोमा जायखो बुङो गाइखेरा गाइखेरानोखा आरो दैबा दैयानोखा लाइमोन समनिफ्रायनो नोरजिया बिमा असिखौ जोथोन लानाय गावनि बिदा बिनानाव बिसोर सानैखौ गोजौ सोलोंथाय लाहोनो नाजानायावनो गोजौ सोलोंथाय लानायखौ जायख्लङा दोन्थ'नो गोनां जादोंमोन समा फैदों बोथोरा थांदों नायल' जाल' सासेल' बिनानावनि जुलि होनायनि बैसोआबो आबुं जाबोदों मोजां सेंग्रा नायफैयोब्लानो बिनानावखौ हाबा हरसिगोन गामिनि बारहावाफोरखौ गिखांनानै स्रिनो उन्दुनानै थाग्रा जाबाय जायख्लङा गावनि दुखु दाहा सात जारलाफोरखौ सानसेबो बिसोरनो फोरमायफेराखैमोन जायख्लङा बिसोरखौ एसेबो दुखु जारलायाव खोख्लैयालाबासिनो बिदा सासेखौ लेखा फरिहोखांना बिनि गांखं आथें आखाय फारौ राफोद खालामनानै होसेबो जेबो खामानियाव उदाय रोङैनि जौ जुवानि आबदायाव आबदा हैनायनि नोरजिया बिमा बेरामिखौ जेबो खौरां लायैनि हरदि हराव जौ सेराब लोङै लोङै फैना न'आव दुम दाखाल खालामफैनाय ओंखामनि थोरसियाव ना बेदर गैयाब्ला ओंखाम थोरसिखौनो सिथ्ला गेजेराव फिनज्राबनो गारहरनाय माब्लाबा गामिनि हाबा हुखाफोराव जौ लोंथिंबायनानै न'आव फैनो रोङै जानाय गामिनि दग्रायाव गोग्लैनानै हर थागोमा बायनाय हाग्रा बंग्राफोराव गोग्लैनानै लुहार थाम्फैजों अरजानानै मोनगुलायना थांनाय फंबाय बिनानाव सानैबो

मोनाबिलि जानाय लोगो लोगोनो जौ फाग्लाखौसो नायगिर नायगिर न'आव लाबोना जोथोन लानांनायनि थाखायनो बिदाखौ गाज्रि मोनोमोन। मानसियालाय डिग्रि गोनां, बेनो जौ जुवानि एम्फौ जाबाय, जाहोना बोरै जाखो बेखौ रावबो बुंसननो हाया जाबाय। फंबाय बिनानाव सानैबो बुजाय आजाय खालामनो नाजायो, अब्ला बियो सानखौनो हर होननानै उल्टायनानैसो होनाय जाबाय। जायख्लंआ साननायनि लैथोआव गोजावबाय, समाव माबा माबि सानफ्लांनाय जाबाय जायख्लंआबो। बिमा बिदा बिनानाव थासेयावबो आं रावनिबो मोजोमसे अननायखौनो मोननोनो थाङाखिसै। संसाराव आं गोजोन सुखु होननाय मुवाखौनो मोनसेबो मोनाखिसै। बिदानि थाखायनो सं दानै दानैनो मेंग्लिबाय। संसारनि खान्थियावनो दंखायो न'खरखौ बिदा गेदेर नेवथोन फिसाफोरासोनो सामलायनांगौ, थाखि थुखियै आंसो सलिनो गोनां जादोंमोन। बिमा बिफानि अननाय मोननायखौ गोजानाव दोनना गेदेर बिदा थासेयाव बिदानि अननायखौनो एसेबो मोनाखिसै। थेवब्लाबो थांखि लाबायल' बिदाखौ जों मोजां लामायाव लाबोगोन। बिनानाव सासेखौबो मोजां न'खर मोजां सेंग्रा मोनोब्लानो बेखौबो हाबा हरसिगोन। जायख्लंनि जेरै थांखि बिब्दिनो बिदाखौ गथ' गोरलै बुरखायनाय बायदि बुरखायबाय। बिनानाव दैमुस्रिया बुंबाय, आदा आंहाबो हाबा जानायनि बैसोआ जाबाय, माब्लाबा मोजां सेंग्रा नायनो फैयोब्ला आं बे न'खरनिफ्राय बिदाय लानानै थांनांगोन। नोंनो जोंनि देरसिन बिदा, जोंनि बिदा गेदेर बायदियै नों आदाया बिब्दि जानो समायामोन। आंनि आदाखौ जौसाय फाग्ला होननानै मिथियोब्ला जोंनि सेराव रावबो साफि फैनाय नङा आदा। दानि बे मुगाया गोदान मुगा, बे गोदान मुगायाव साफ्रोमबो सुबुङानो एसे एनैब्लाबो सोलोंथाय गोनां जोबसै। न'खरनि फोलेराव सोरबाफोर जौ फाग्ला फाग्लि आरो न'खर फोलेराव अराय सम बेमार आजारजों भुगिनानै थानाय बेफोरबायदि न'खरनि गासै हालोदफोरखौनो दानि गोदान मुगायाव जोंनि बर' समाजावबो गुदि बिजौ नायगिरनाय जाबाय आदा। आं लेखा फरायनानै गियानि जाना माथो जानो, मोजां सेंग्राखौ आं मोननायनो नङा। फारसेथिं आदा जायख्लंआबो जोंनि न'खर सामलायनायाव मेंग्लिगोन। जोंनि गोजोन न'खराव बिब्दि जाफ्लेबाय थायोब्ला जोंनि गोजोन न'खर दानांगौआ बायफ्लेगोनसो आदा। बिनानाव दैमुस्रिया हां खनसे लास्रावनानै बुंबावबाय, जायख्लं आदायाबो गावनि फरायनायखौ दोनथ'नानै जोंखौ साफा साफा मोजां मानसि जानो फोरोंबाय। बिब्दि बुंलांबाय थानाय समावनो बिदा कमला सोंबावबाय, अब्ला आं दा मा खालामनांगौ आदा? इसोरा जोंनो मोजाङैनो नायबिजिरनो थाखाय मेगन थाइनै हरदों, मावै दाङै जानो थाखाय फारनै आथें फारनै आखाइखौ हरदों। बुहुमाव गसाया जोंखौ मानसि महर होनानै सोरजि हरदों। जेब्ला जों मोजां मानसि जानो सोलोंनांगोन, नों दायो खालि जौ लोंनायखौ गारदो आरो इयुन संसारखौ मोजाङै सोलिलांनो नाजादो। दाबो सम दङ आदा, नों दाबो मोजां मेलेमजों सानखांना मोजां लामाथिं दावगाफिनदो, मोजां मानसि जानो नाजाफिनदो। नोंनि आंगो गुबै लोगोआ न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरासो। जौ जुवा सेखना जाबथिंनाय लोगोफोरा दान्दिसेनि थाखायल'। ओइ र' र' र', नों आरो दा बुंबावसै बिनानाव, आं थारै नोंसोरखौ बिब्दि जानो होआ। आं थांनानै थासान्दि नोंसोरखौ बेबायदि जानो थिना। आं नोंनि खर'आव हमनानै समायलाबाय बिनानाव, आं आरो दिनैनिफ्राय जौ लोंनायखौ गारनोसै। बिदा कमला सिरि मोनखांनानै बुंदोंमोन, गारनोसै नङा, गारखाबाय होननानै बुंदो। बिनानावा फिन बुंफिनदोंमोन, अ आं गारखाबाय नोंनि समाय, नोंसोरखौ आं जोबोद दुखु दाहा होबोबाय, मिथिस्लाबाखिसै आंदि मानो बिब्दि माबोरै जालांखो। हां खनसे गोलाव बोनानै बुंफिनबाय कमला, मोनसे समाव बिनय आदाया आंखौ बुंमारदोंमोनथ', नोंसोर बे गामिनिनो साफा सफा मोजां मानसि जानो नांगोन, नोंसोर मोजां मानसि जाना दिन्थिब्लासो गामियाव मोजां मोजां मानसि उजिगोन। नोंसोरनो दायो साफा साफा लेखा गोरोंजोब, दानि मुगाया बादायलायनायनि मुगा, बे बादायारि मुगायाव साफ्रोम लाइमोन सेंग्राफोरा साख्रि मोननायाबो गोरलै नंलिया।

जोबोद गोब्राबलै, नोंसोर जाख्रिसे सेंग्राफोरा साख्रि नागिर होलांखा, साख्रि नागिरना मोनै सान्दि, सोरबाया मटर गारिनि ड्राइभार जाहै, सोरबाया मेकानिक सोलोंहै, सोरबाया न' हाग्रा राजमिस्त्रिफोरखौबो सोलोंहैखादो। नोंसोर एरैनो उदां बेकारनो दाथा, खामानि सोलोंनायाव लाजिनो नाङा। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदिया जोबोद खम, बुंनो थाङोब्ला गैयाखौनो बुंनो हायो। आरोथ' बुंनो थाङोब्ला नोंसोरनि देहा मोदोमफ्रा जोबोद गोख्रों गोजाजोब, गोजौ गोजौबो। आर्मिफोरावनो इन्टारभिउ हैदो, रां होनालासेनो खारनो बारनो हायोब्लानो गोरलैयैनो बेयाव साख्रिया जाथारलाङो। बिनानावाबो दाजाबदेरनानै बुंदोंमोन, बिनय आदैनि बायदि बिथोन होग्रा, मोजाङै बुजायनानै होग्रा जोंनि गामियाव गैयाखौनो बुंनो हायो। समाव बिनय आदैनि बुंनाय बाथ्राफोरा आंनि मेलेमाव सौग्राव फैबाय थायो बिनानाव। थेवबाबो मानोबा बोलो मोनखाङा मोनखाङा मोनोमोन, राहा गोथे गोथे जादोंमोन बिनानाव आंनि गोसोआ। आं सानखांनो रोङाखैमोन, न'खरनि फारसे जेबो साननोनो रोङा जालांदोंमोन। आं बोलो मोनखांबाय बिनानाव नोंसोरनि आरो बिनय आदैनि बुंनाय बाथ्रायाव। जेरै थांखि लानाय एरैनो जायख्लंनि बिदाया बोसोर मोनसेनि उनावनो CRPFनि आन्जादखौ होदोंमोन। बे गिबि खेब आन्जादाव बियो थारैनो गासैबो आन्जादखौनो मोजाङैनो उथ्रिजोबनो हादोंमोन। फंबाय जायख्लंआ बिदानि बिब्दि नाजानायखौ नुमारनानै जोबोद खुसि जादोंमोन। दानिया जोंनि बिनानाव सासेनि जुलिखौ गाजा गोमजायैनो खुंलांनो हाथारसिगोन। जायख्लंनि जेरै साननाय एरै जामारगोन दा। जेब्ला कमला CRPFआव जयन जाहां जाहां अब्ला जायख्लंआ खोनानो मोनबाय गामि सेरनिनो बिग्रायनि फिसाजोआनो बिदा कमलखौ सिरि सिरि मेगन खेबोनो। साख्रि मोननायखाय बिसोरनि मोजां मोनलायनायनि खौराङा सोराङाव नुजाथिदोंमोन। जायख्लंआ अब्लासो सानखांनो हादोंमोन दि बिदानि जौ फाग्ला जानाय जाहोना थारै बे सिख्लानि थाखायनो जायाखैमोनथ'। बेफोर जायखि जादोलिया, बिनानाव सासेखौ जुलि हरखांनायनि उनाव कमलाबो गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ 2 बोसोरनि उनावनो हाबा लाबाय, जुलि जाबाय, गथ' गथायनि मोखां नुबाय। बिदाया डिउटियाव थाहैयोब्ला, गथ' गथाय बिमाया लोमजा साजा जायोब्ला जोथोन लानायनि बिबाना हावरिया जायख्लंनि खर'आवनो गोग्लैफिनबाय। बिदायाबो बिनियावसो खौरां लाहरबाय थायो, न'खरनि आरो गावनि गथ' गथायनि खौरांखौ। जायख्लंनि जोथोनावनो बियादै फिसाजो अनजिमाया देरबायमोन, फरायसालियाव मुं थिसननायनि बैसोआ जाबाय। दा मुगानि हाबा जानाय बर' हिन्जावफोरनि बाथ्राफोरखौ मा बुंगोन? हौवा हौवाफोरा साख्रि मावहैगोन, हिन्जाव हिन्जावफोरा टाउन सहर गथ' गथाय फरिहोनाय मुङाव टाउनाव थाहैगोन। टाउन सहरफोराव बर' हिन्जावफोरा भारा थाहैना सोर सोरजोंदि मा जाहैयो मा जाहैया बेखौ रावबो मिथिलियासै। बेफोरखौ दा मा बुंबावगोन? खर' सायाव मुजुदै गारिब्ला गावनि न'खराव गोग्लैफिनो होननाय बाथ्राया नंखाय नंमारा। जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ गुबुन हारिनि हौवाफोरा बम्ब्रायनो जोबोद गोरलैथार, एसेयावनो बर' हिन्जावफोरनि गोसोआ गलियो। जायख्लं बिबाजैया गावनि हौवानि अननायखौ थोआ थोआ मोननाय जाबाय। अननाय मोननो लुबैयोब्ला अननायखौ मोनलिया, हारसिं हारसिं मोननाय जाबाय। बेखायनो गावनि हौवानि अननायखौ मोनैलाय नायगिरथिंबाय हालाय हाफायनो। बे बाथ्राखौ जायख्लंआ गुबुननि खुगानिफ्रायसो रोमै रोमै खोनानो मोन्दोंमोन। फिसाजोखौ फरायसालियाव दोनखांना फैना सिनाय मोनै असिनाकि हौवाजोंसोनो सेंग्रा सिख्लाफोर बायदि मालाय स्रें स्रें पार्कआव थाबायहैसोगारोनो। माबोलाबा दंफां गुदियाव जनानै खुगा जराय जराय माबा माबि बुजि मोनै खुगा सिङावसो बुंसोलायोनो। आथिखालाव जायख्लंआ सोमोनांबाय, बाथ्राया दं खिनाया लाजिया नुनायासो लाजियो होननाया न'खरनिफ्राय बारनग' हानाय लोगो लोगोनो बोरै गोसो सोलायहोनो हायो हिन्जावफोरा। जायख्लंनि बिबाजैया न'खराव फैयोब्लाबो बिमा बिफानि न'आवसो थाहैग्रा जाबाय, गावनि हौवा बिहाव बिखुमजोनि न'आवनो थांलिया, हौवानि आंगो न'खरखौनो बावगारबायनो। थारैनो जोंनि बर' हिन्जावफोरा गुबुन हौवाफोरजों खारसनहैनाय, गुबुन रायजोफोराव लांना फानजाहैनाय, बुथार जाहैनाय जाथाय जानायफोरा बिब्दि हिन्जावफोरानो खुनुरुखुमै बिदाखौ बुजाय आजाय खालामखांनानै

0: साखरि लाहोबाय बेनि बिबाजैयाबो बिब्दि गाज्रि मुगैथाव आखुखौसो बोजबफिनना लालायबाय बिब्दि जाहै स्लाय स्लाय नोरजिया बिखुमजोखौनो जोथोन लानायमोनब्ला मोजांसो बोर मोनगौमोन मोजां बोरखौ मोननायनि सोलाय गाज्रि मुं गाज्रि सुबुंफोरनि बोरसो मोनसिगोन सावनांगोनलै बेनियाव जायख्लङा बिसोरनि फिसानि सायाव मोजां गाज्रि खौरां लानाय थै थाङै बिसोरखौ जोथोन लानायखौ जुदि थारैनो बावगारनानै बिब्दि खालाममारदोंब्ला मागो दमासिङाव बिदा कमला सुटि लाना न'आव फैदों दान मोनसे खावसे सान लाना मागोनि गुसु बार बारनायखाय अर सायदों बिदा फंबाय सानैजों अरखौ सायखथ'नो मागोनि सौराय फिथाजों गुदुं गुदुंनो ज'यै साहा लोंलायदों बिमायाबो फिसाफोरजों जफा देरनानै अरखौ सायफा फैदों साहा लोंलायनायावनो बिदाखौ जायख्लङा बुंदोंमोन आदा बाजैखौ एसे सामालि थानो होदो गामिनि रायजोफोरा बाजैनि फारसे नोजोर होगासिनो दङ बिदाया हांमा गोलाव सुरखांनानै बुंदोंमोन फंबाय खि जानाय मोसौआलाय बहाथो गारनोलै खि जाग्रा मोसौआ सिखाव खावनानैब्लाबो खिखौ जागोनसो जाथारगोन बिब्दिनो बिखौ थानो होदो खनसे नङा खननै नङा गले गले बिब्दि रायजोनि नेम खान्थिनि बादगा मावबाय थानायनि थाखायनो कमलनियाव बिथोन लाहरनानै रायजोफोरा बिसोरखौ रायजोनिफ्राय एरख'नानै दोन्दोंमोन सिबाय जायख्लङा गावनि इयुन जिउखौ लाना न'खरनि हालोदखौ लाना खर' आखाय हमनानैल' थानांगौ जाबाय
1: एस एस एम बिनय कुमार बसुमतारीनि गोदानै फोसावनाय जायख्लंनि गोदान जारिमिन बे सुंद' सल'खौ खोनासंनो मोनबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैनि थुनलायारि आयदाया एसेनोसै दानिया फैदो मेथाइनि आयदायाव आयदायाव फोसावनो लादों आगोलावनो फोसावखांनाय निरुला बसुमतारीनि गाराङाव गलाब बसुमतारीया सुजुनाय नैबे गोदान मेथाइखौ आरोबाव दादामसै सिफुं

नोंथांमोनहा आं गोदान मेथाइ खोनानो मोनगासिनो दङ निरला बसुमतारिनि गाराङाव बिथांनि गाराङावनो खोनासंबावदो नैबे गोमोनदोंसे गोदान मेथाइखौ बेसे आगोमा जोनोमपुरि मेथाइनि बाथ्रा गलाब बसुमतारी

एसे सम निरला बसुमतारीनि गाराङाव माखासे गोदान मेथाइ खोनासंनो मोनबाय बेजों लोगोसे मेथाइनि आइडिया एसेनोसै सम जानानै फैनाय लोगो लोगो गासैबो खोनासंगिरिफोरनिसिम जोंनि अन्नाय आरो खुलुमनायखौ फिन बहरनानै दिनैनि बर' आफादखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों

0: डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन के फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की

0: बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
2: अंडर द थ्री पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बम हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव

0: ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इन इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: বেমার ভাল হওয়ার বর ফুটনি দেখুন তোর কথা তো কি
4: নহব কিয় হোমিওর চিকিৎসায় মোক নতুন জীবন দিলে যে
3: তার মানে
4: মানে তো হল হোমিওপ্যাথিক আঞ্চলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান
3: তাত কি হয়
4: হেরো নহয় কি যক্ষ্মা রোগ ধরা পেলোয়া মাতৃ শিশু তথা সাধারণ বহির্বিভাগ সুলভ সরকারি হারত ঔষধ প্রদান আর পরীক্ষার লগতে